निरिचाश्रिताय निरवध्य गुणाय तुभ्यं श्याम किंकरो गिरीश न जातु मह्यम् श्रीशक्रियाधरितया पदुपाय भागे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या निरिचाश्रिताय निरवध्य गुणाय